0: नमस्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम में राकेश माथुर आज आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम समर्पित है युद्ध और शांति को लेकर के। ये जो सप्ताह है वो रिमेम्बरेंस वीक है, रिमेम्बरेंस डे 11 नवंबर को मनाया जाता है यहाँ पर। तो रविवार को जो है महारानी जी ने जो है फूल चढ़ाए थे और सोमवार को 11 नवंबर को बहुत धूमधाम से जो है व्हाइट हॉल को बंद करके पॉपीज चढ़ाई गई थी उसमें उन सेनानियों के लिए जिन्होंने लड़ाइयों में काफ़ी अपने जीवन की आहुति दी। तो हमारी जो है, आपने तो बहुत सुना होगा जिन लोगों ने आहुति दी है पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में और अब अफगानिस्तान में, और काफ़ी मर्मान तक जो है ये माहौल था जब हम गए थे देखने के लिए। भीड़ भड़क का लोग जो है, सेनानी लोग जो है अपने यूनिफॉर्म में थे। तो लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जो कि बहुत दुखी थे, उन्हें कोई खुशी नहीं थी इस बात को लेकर के सेलिब्रेट करने के लिए रिमेम्बरेंस डे। उनमें से एक है नेपाली गोर्खा ज्ञान राय, जो कि सेना में काम करते थे और आजकल वो भूख हड़ताल कर रहे हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने। तो हमारी उनसे बातचीत हुई इस सिलसिले को लेकर के, रिमेम्बरेंस डे को लेकर के। चलिए उनसे बातचीत के अंश सुनते हैं। ज्ञान राय,
1: मेरे नाम ज्ञानराज राय है। मैंने 20 इयर्स ब्रिटिश आर्मी में सर्विस किया था। आफ्टर रिटायरमेंट आई एम कैंपेनिंग फॉर इक्वल राइट्स, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग। दे आर बुलिंग द पोर कंट्री लाइक माय कंट्री नेपाल। इवन दो नेपालीज गवर्नमेंट इज रिक्वेस्टिंग मेनी टाइम, they are bullying us. And
2: what are the problems you are facing, specific problems?
1: The main problem is the old and frail and poor people who have come over here. They can't speak English and they can't go to the GP, they can't take the medicine in time. If they got any problem, they don't have any helper or carer, you know. They are really suffering horrendous time, and they are just coming over here to claim some benefit. If they stay,
2: who is claiming?
1: The old veterans like me, but they are senior citizen over 60 years of age, you know. They only come over here to claim some benefit so that they can send back to look after their dependent family in Nepal.
2: So you don't get the equal rights like other
1: senior. Exactly. Citizens,
2: and you sacrifice for this country.
1: Yeah.
2: Yes. How many years did you devote?
1: I did only 20 years.
2: 20 years.
1: Yeah.
2: It's a long time.
1: Yeah.
2: So you were posted in a lot of other countries.
1: Yeah, I served in Hong Kong, Brunei, Canada, and the UK, and Nepal as well. In Nepal, we have a depot as well.
2: Okay, what do you think about today's the whole ceremony? They had a big ceremony here, Remembrance Day.
1: I don't know what they are, doing the ceremony actually. And in fact, if they respect their ancestors, they should be respecting, practically giving their rights, looking after their family, you know. But that is just the drama, you know. That's what I feel.
2: Yes, and you feel sad about it because they are spending so much money on all these kind of pretensions.
1: Exactly, exactly.
2: They don't give you what is right for you.
1: Exactly. Actually, they killed many, many veteran and their family before they should die, you know, because they could not eat good food. They could not get treatment or medicine in when they need it. They could not educate their children. आपका मालूम है ना, और बहादुर लोगों के son and daughters, they are working in India, Saudi Arabia, Qatar, where, yeah, and so, Malaysia.
2: हाँ, लेकिन आपको शिकायतें ब्रिटानी सरकार से हैं, British government से आपको शिकायतें हैं?
1: We have been campaigning for last 15 years. And they are not listening, so we are compelled.
2: ने क्या काफी मदद की थी जॉनल अम्ली?
1: उसने काफी किया था।
2: आपने बातचीत की आपने जॉनल अम्ली?
1: मैंने किया था। Where she only could did manage to give us settlement right only, but even on that, she could not do for adult children who are not married, so they could come over here.
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: तो ये थे गुरखा महोदय, जिनको काफ़ी शिकायतें थी कि सेना में उन्होंने 20 साल जो है अर्पित किए और उनको जो है संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो वैसे हालांकि उनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई है, नए लोगों को ज़्यादातर खास तौर पे। खैर, आज के कार्यक्रम में युद्ध के प्रति तो है हमारी कोई संवेदना नहीं, हम जाहिर करेंगे, क्योंकि हमें जो वक्ता मिले हैं वो सब उन्होंने देखा है कि इस युद्ध के کہ کتنے جو ہیں بھی برے برے حالات جو ہیں لوگوں کو محسوس کرنے پڑے ہیں. تو ہم آپ کی بات چیت جلدی ہی کروائیں گے ایک اور جناب سے, وہ اٹالوی ہیں گبریلے کاش, اور انہوں نے ایک پستک لکھی ہے کڈنیپ کی. ان کو افغانستان میں اپہرن کیا گیا تھا, وہ تصویریں کھینچا کرتے تھے. تو ان کی پستک ابھی شائع ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں ہم اس سے چرچا کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ سنگیت سناتے ہیں, میوزک.